अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनू धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी।

सच्चे पातशाह। प्यारे गुरुदेव सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मिक अवस्था इस तरह की है कि हों जीवा नाम ते आए

ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਏ, ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੜਾਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦੇ, ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਵਸਾ ਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਕੱਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਨ ਵੀ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਭਰਿਆ ਜੋ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਵੱਖਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੇ ਨਾ ਕੋ ਖਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੇ ਨਾ ਕੋ ਖਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ
केवल नाम। ये सी कल पंक्तियां विचारी हैं सी, नानक के घर केवल नाम बोलिया करो, सिर्फ नाम। अल्टीमेटली जो साढ़े हाथ च आएगा वो नाम। और महाराज जी आखते हैं कि नावे जेवड़ होर दात नहीं। कई लोग आखते हैं वाहगुरु ने सानू बहुत दाता दितिया हुई हैं, पर महाराज जी आखते हैं नाम तो वड्डी दात कोई नहीं है, ये सब छोटिया मोटिया हैं, ये दाता नहीं हैं, ये सगों रब नू पलाउन वाली वस्तुआं हैं जिन्होंने असी दाता समझ दे रहे हैं। सच्चे पातशाह आखते हैं नावे जेवड़ होर दात नहीं, नाम तो वड्डी होर कोई दात नहीं। फिर दात मंगनी होवे तो वड्डी ही मंगनी चाहिए, छोटियां क्यों मंगनिया हुई। ताई महाराज ने आख्या है देह नाम संतोखी है उतरे मन की भुख, कि मैनू नाम ही बख्शो जिस दे नाल मेरिया सारिया ही भुखा खत्म हो जाए, नाम बख्शो। तो नानक के घर केवल नाम। महाराज जी ने आख्या नानक दे घर दे विच केवल नाम है, नानक दे घर दे विच पूजा भी नाम है, पूजा कीचे नाम त्याई है, तीर्थ भी नाम है, तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है, दवाई तमाम किस्म दे शरीरक मानसिक रोगों का इलाज करन दे वास्ते भी दवाई जड़ी नाम ही है, संसार रोगी नाम दारू, नाम ही दारू है। साड़ी जिंदगी दे जितने दुख हन पेन सफरिंग्स मिजरीज हन वो जहर है, उस जहर नू मारन वाला मसाला भी नाम ही है, दुख मौरा मारन हर नाम। महाराज जी आखदे हन साडे घर दे विच गुरु दी सेवा भी नाम ही है, नाम हमारे पूजा देव, नाम हमारे गुरु की सेव, गुरु दी सेवा भी हमारे ग्रह साडे पास नाम ही है। अते अगर साडी जिंदगी च नाम नहीं है तो महाराज जी कहते हैं ऐसे जीवन का जीण का कोई अर्थ नहीं है, बेशक वो मरे ही जाए उसका कोई अफसोस नहीं है, मरना जाही जिना विसरत राम, नाम विहून जीवन कौन काम, नाम तो बिना जीवन कहते किस कम है, किस कम है। कहते जल जाओ जीवन नाम बिना। इना पंक्तियां नू थोड़ा जा अपने दिल नू लगन दो, क्योंकि असी सुनन दे आदि हां, सुन सुना तक ही गल ना रह जाए, थोड़ी सोच विचार जागरूकता दे नाल सुनो ताकि ए साडे अंदर थोड़ी जही चोट भी मारन, क्योंकि असी हो पत्थर वर्गे गए हां, चोट लगदी नहीं है, इस करके असी सुन के फिर उसे तरह दे रह जाने हां। महाराज जी ने बाणी च आख्या ऐसा ना होवे कि आप कितने गुस्सा कर लो भी भाई साहब ने कहता असी पत्थर वर्गे हो गए हैं, ये मेरा अपना ख्याल नहीं है, ये महाराज जी दी डायग्नोज है, महाराज जी ने साडे अंदर देखे हैं, वो जानते हैं साडे अंदर किस तरह दे हैं। कहते हैं मन कठोर शब्द भेद तू, कहते मन कठोर होए पे हैं साडे, इसनू शब्द के हथौड़े के द्वारा ही तोड़िया जा सकता है, पर मन कई दफा इतने कठोर हो चुके हैं कि ना ते किसी गल का असर ही नहीं होंदा, कि साढ़े ते इस गल का कोई असर नहीं होंदा। महाराज जी कहते हैं जिनी नाम विसारिया से होत देखे खे, कि असी इतने इम्यून हो चुके हैं महाराज जी की बाणी के इन्ह शब्दों के तीरां तो, कि गुरु बाबा जी आखते हैं विसरिया जिन नाम ते भोए पार थीए, कहते ओ लोग जमीन उत्ते धरती उत्ते बोझ हन जिन्हां ने वाहिगुरु दे नाम नूं विसारिया। सो हरेक बंदा अज तो बाद जिसले तुरिया फिरेगा वो सोचे कि मैं धरती उत्ते बोझ हां जां की हां, जे नाम भुलाया होया है तो धरती नूं भी तकलीफ दे रहे हां, धरती दे विच भी कॉन्शियसनेस है, ये भी अलाइव है, ये भी जिंदा है। और अगर असी नाम तो सखने हां ते असी इस धरती नूं भी पल्यूट करते हैं, इस धरती नूं भी डैमेज करते हैं, ते इस उत्ते बोझ पाने हैं, तो जे इस उत्ते बोझ पाने हैं ते किसी दिन साढ़े ते भी बोझ पाएगा।
कर्म का फल जरूर होंगा। बाबा जी ने यह आख्या है, विसरिया जिन नाम ते पोए पारथी है, जिन्हां नूं वाहिगुरू का नाम विसर गया वह धरती उत्ते बोझ हैं। और एक अखीरला प्रमाण कह के फिर मैं अज दे कीर्तन दे वल नूं वधांगा। गुरु महाराज जी ने आख्या है, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस ढोर, जिन कीते तिसे न जानई बिन नावै सब चोर। कहिंदे सारे ही चोर हन, नाम तो बिना हरेक इंसान चोर है। और इस नूं जां ते असी इतना लाइटली लवांगे कि सुन के चले जावांगे, पर असी महसूस नहीं करांगे कि गिल्टी फील नहीं करांगे कि असी चोर हां जां मैं चोर हां। पर जे महसूस करांगे कि महाराज जी ते झूठ नहीं आख सकदे, गलत नहीं आख सकदे, अतकथनी नहीं कर सकदे, गुरु बाबा जी की गल कही हुई दे विच सच है, तो इसका अर्थ अगर मेरे पास नाम नहीं है तो फिर मैं चोर हां। अगर ये तीर लग जाएगा तो फिर वो बेचैन करेगा, वो दर्द दबेगा कि मैं गुरु महाराज जी दे पास गया, गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन नूं देख के एक नतीजा निकालिया है कि तू चोर है। तो कितनी बड़ी तौहीन, कितनी बड़ी चोट। पर रियलिस्टिकली असी अपने आप नूं चोर समझांगे नहीं, जिस तरह के शब्द सिर्फ कैंड सुनन दे वास्ते ही हैं। पर जेड़े गुरु बाबे दे वचना उते इतना भरोसा प्यार यकीन रखते हैं, वो इस गल दे नाल चोट खा जाते हैं। महाराज जी ने आख्या, बिन नावै सब, आप जी आखो की कहंदे हैं महाराज जी, बिन नावै सब चोर। वी मस्ट रिपीट दिस लाइन फ्यू टाइम्स ताकि साडे उते असर कर सके। एक अद्धी वारी कई नाले असर नहीं करना। And I'm going to continue repeating this line every day. Bin naava hai, sab chor, sab chor, sab na de vich. Asi bhi aane hain, jahan ko jide bahar sadkaan te firde han, oh chor han. We are also included. Bin naava hai, sab chor. Toh badi bhari samasya khadi ho gayi. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੇ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो किसी भी वस्तु होवे बना ले जाए अपनी, वो चोरी नहीं होंदी तो और की होंदा है। किसी भी चीज नूं संभाल के बह जाओ, कब्जा करके बह जाओ, तो फिर आखो ये मेरी है, तो वो चोरी हो गई। बिन नावे सब चोर, इत्थों तक असीं सुनिया। अज दे कीर्तन दे विच जो दूसरा स्टेप है नाम नूं समझण दे वास्ते, क्योंकि महाराज जी की बाणी दे विच नाम नाम नाम नाम बहुत दफा आंदा। पर साध सिंह जी सोचण वाली गल ए है कि किसदा नाम हुण ए पहलू आरंभ हुंदा है। इतना महाराज जी नाम का जिक्र करते हैं, सोचना पैंदा है किसदा नाम, क्योंकि नाम दे पिछे जां ते कोई ना कोई परसन हुंदा है, नाम दे पिछे जां कोई प्लेस हुंदी है, जां नाम दे पिछे कोई होर वस्तु हुंदी है, कोई ना कोई सबस्टेंस ते हुंदा है ना, जिसनूं असीं कोई ना कोई नाम दिंदे हां, जिसदा नाम, नाम वाला, उसनूं असीं नामी आख सकते हैं। नामी जिसदा के नाम है। गुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच सिर्फ नाम दी ही गल नहीं करते, जिसका नाम है, जो नाम वाला है,
जो नामी है उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि जे सानू कल्ला ही नाम मिल जाए पर जिसका ये नाम है वो ना मिले तो फिर तो कुछ भी ना मिले। फॉर एग्जाम्पल सानू भुख लगी हुई है, सानू खाण नू रोटी चाहिदी है, रोटी तो सिर्फ एक नाम है, रोटी तो सिर्फ एक नाम है, निरा लफज रोटी दे नाल असी रज सकते हैं जब तक जिस चीज का नाम रोटी है वह ना मिले। सो जिस चीज का नाम रोटी है प्रशादा है जे वह ना मिले तो सानू रज नहीं आ सकता, तृप्ति नहीं आ सकती। तो गुरु महाराज जी ये बहुत गहराई दे नाल विचारन वाला नुक्ता है कि जिथे नाम का जिक्र करते हैं उथे जिसका नाम है जो नाम वाला है उसका भी जिक्र करते हैं। हुण बाणी दे विच शब्द देखो आते हैं तू तेरा तेरे तेरिया तुम, ये जो लफ्ज हैं ये ते किसे हस्ती नू ही एड्रेस किए जा सकते हैं, यानी किसे कोई प्रेजेंट है जिसनू असी तू कहने हैं। तो महाराज जी की बाणी दे विच थां थां थां थां ते उस हस्ती नू आख्या है तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, इसका भाव कोई बींग है, कोई होंद है, कोई एग्जिस्टेंस है जिसनू महाराज जी तू कह के एड्रेस कर रहे हैं। नथिंगनेस नू तो तू नहीं ना कहा जा सकता। तो गुरु महाराज जी के पास मेरे कहने का मतलब यह है नाम है पर जिसका नाम है उस दे नाल महाराज जी का संबंध है, जिसका नाम है उस दे नाल संबंध है। इसे करके जिसका नाम है जो नाम वाला है महाराज जी एड्रेस करते हैं उसनू, कहते हैं नाम तेरो आरती मजन मुरारे, कहते हैं खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाम, उस प्यारी हस्ती नू उस नाम वाले नू कहते हैं कि तेरा नाम बहुत खूब है, बहुत खूब है, बहुत खूब है, खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाम, तेरा नाम बहुत खूब है। हुण कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई सामने ना होवे तो इंसान आकाश वाल नहीं देख के या हवा वाल नहीं देख के थोड़ो आखी जाएगा कि तेरा नाम बहुत खूब है। किसी दे नाल कोई कॉन्टैक्ट होएगा, किसी दे नाल कोई रिलेशन होएगा, कोई सामने प्रेजेंट होएगा, उसे नू ही आख्या जा सकता है कि तेरा नाम बहुत खूब है। सो इस तो भाव यह निकलिया महाराज जी के पास जिसका नाम है वो नाम वाला भी महाराज जी के पास है, और जो नाम वाला महाराज जी के पास है तो महाराज जी का उस दे नाम दे नाल भी प्यार है। गुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच अनेक थां उत्ते आखते हैं तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए, कहिंदे वाहिगुरु तेरा नाम जड़ा है वो रतन है, कहिंदे हैं नाम तेरा आधार मेरा, तेरा नाम जो है वो मेरा आधार है। सो पॉइंट समझने वाला यह है कि नाम के पिछे कोई नाम वाला भी है, नाम के पिछे कोई नामी भी है, नाम के पिछे कोई अजिही शख्सियत भी है जिस दे नाम की इतनी वड्डी तारीफ है, उस शख्सियत दे नाल महाराज जी का प्यार है, उस शख्सियत दे नाल महाराज जी का कितना प्यार है आओ उसनू सुनो। कहते हैं

तू मेरे प्यार हो तो कैसी भूखा, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरिया दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए। ए मेरे प्रीतम, प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक एक्सप्रेशन है। ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जड़ा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। सतसंग जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हां जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार, नाम प्यार, नाम प्यार, नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च, नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उस दा नाम प्यारा लगता है। सो एथों दो नुक्ते सिद्ध हुंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी दा अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है ते गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसे ना किसे एक्सपीरियंस के बेस उते हुंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलानगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसमें मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनू जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरां नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है ना। हुण असी महाराज जी तों आओ गुरबाणी चों पुछिए, सच्चे पातशाह साडी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह पवे? सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी के घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साडे ते तरस करो ना, तो असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? यह किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो नाल मन ना लगे? जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं, तो सानू नाम जपन लग्यां नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम, तीन घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उसका नाम भी प्यारा लगता है और उस दियां सारियां ही चीजां प्यारियां लगदियां। मेरा नाम ही नहीं, जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण के ते। उस दे नाल प्यार है करके कहंदे हन तेरे अनेका तेरे च गुण हन, क्योंकि जिदे नाल प्यार होवे ओच ही गुण नजर आया करते हैं। जिदे नाल प्यार ना होवे ओच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहते हैं तेरे अत्यंत गुण हैं, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहते बलिहारी कुदरत वसिया, कहते तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हूं, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हूं। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तां अपने आप ते कई दफा तरस करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है, what to do with it we don't know, sometimes we even go to the extreme of taking our own life। par maharaj ji aakde han wah asan tu wah jin rach rachna hum kiye, us de naal pyar hon karke maharaj ji adore karde han ke tu kamal hai, kis tarah da tu sanu banaya hai, kehnde han wah asan tu wah jin rach rachna hum kiye, jisne rachna rach ke sanu banaya hai।
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नू वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नू कहिंदे हन ये अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण साथ संगत जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वो एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उसनू जानते हैं वह कित्थे है, महाराज जी उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हैं, कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाओ, कहते हैं तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता भाव के हा काला जी, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेम मांग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है, ये है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है, केंदे बस ओ उसका मेनू प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, होर बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ये ले लो। महाराज जी आखते हैं हम सुन वाला शब्द है, कहते अत्यंत चीजा खिलाड़ियां पई हैं सामने, अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिदा है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रखे है, ते महाराज जी आखदे हन उस वल उंगली करके ओ उहा प्रेम प्री, कहिंदे ओ प्री दा प्रेम ही चाहिदा है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं, कहते नहीं, तीन बारी आख्या है, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मैनू हीरे ना मैनू पर्ल्स ना मैनू स्टोन्स ना मैनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग, राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किछ किछ ना चाहिए, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बेन आओ सारे आखिए, ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है। साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर, साडे कोल रस्मो रिवाज सारे हो सकते हैं, साडे कोल आलिशान गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन साडे कोल जे है नहीं तो की नहीं, अंदर खाली प्रेम बिन, सारे बोलो इस पंक्ति नू, अंदर खाली प्रेम बिन, साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली है। अते महाराज जी आखदे हन जिथे अंदर प्रेम नहीं है, कहिंदे ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया ओ एक बराबर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। ते गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो
ਭਗਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵਿੰਗਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ,

जवाब है बाणी। संतां संगत मिल रहे क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम होंदे हैं, प्रेम रूप होंदे हैं। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साधी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी च देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल है। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे नाल ही बना दी है, मेरे सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लो बाद दे विच। कहते हैं संत संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहा

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण षाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन नु पालना। पहला निर्धन नु पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे चाती पायो, अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन नु पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे। जेड़े बंदगी वाले महापुरश सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नु केड़े ढंग नाल पालदे ने। उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे। उत्थे अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण पहला निर्धन नु पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के ला ले, लाउणा किथे। किसे गुरुद्वारे की कार सेवा लई देंदा, वो भी गुरु नूं पहुंचदा। लंगर लई देंदा, वो भी गुरु नूं पहुंचदा। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदी, ककारां लई, ये भी गुरु नूं पहुंचदा।

फिर वैराग दी मूर्त साहब गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या मैं अज ऐसा पंथ सा

बातें हैं, ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो शहादत के लिए।

फिर मेरे सतगुरु ने वचन कर दिते, उपदेश दिता, साध संगत विच नाम जपिया, गुरु मिल पे, उन्होंने वचन कीते, उन्होंने वचना करके मैनु पता

जे सच्चे दे दरबार विच जाना होवे फिर सच वस्तु ही ना लेके जानी चाहिए, कूड़ नहीं लेके जाना चाहिए। ये सच है, कूड़ तो अंदर जाएगा भी नहीं, बाहर ही रोक लेंगे। ते कूड़ किसनु कहंदे? जिस वस्तु नाल नेहो करिए करतार विसर जाए वो कूड़े, जिस वस्तु नाल नेहो करिए परमात्मा चेते आ जावे वो सच्चे, तो सतनाम श्री वाहे। हुण असीं फैसला करिए जिहड़ा असीं भोजन छकदे हां, जे तो इस भोजन छकण दे नाल परमात्मा चेते आउंदा ते सच, जे भोजन छकण दे नाल परमात्मा ही भुल जांदा ते आलस आके सो जांदे आ ते फिर भी कूड़े, ते सतनाम श्री वाहे। जे असीं भोजन दे नशे विच इतना खाई जांदे आ ते परमात्मा ही विसर गया, सानू अपना खाना चेते, सानू हसना चेते, सानू पीना चेते, सानू सोना चेते और सानू मरना भुल गया, जब सतनाम श्री वाहिगुरु ते सानू साहिब भुल गया। खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, कसम विसार खुआरी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना। ते फिर कहंदे ने की वस्तु लेके जाइए?

ए राधारी जप जिसका सुरलेख जप मोर कि लगी सुनो आद सच हूं गुरु नानक दी मोर ए नानक क्यों जी गुरु नानक के स्टैंपा के नाल ना गुरु नानक की स्टैंप लगी हुई है लगी है ना ते जिसके हिरदे विच जप होएगा उसनु कोई जम जगात नहीं लगेगी जो सतनाम श्री जी जिसके हिरदे विच जप होएगा धर्मराज अगों हाथ जोड़ के खलो जाएगा ते बोलेगा हो सेवक ठाकुर अविनाशी जब सतनाम श्री जिसे जप होएगा

सत्संग भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 400 साल संसार के हर कोने विच मनाया जा रहा है। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

0: सतगुरु नानक साहब सतगुरु सच्चे पातशाह उच्चारण करते हैं। बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोया बिरला बूझ जाए कोई। भाई इस माया ने कई संसार विच खा लिया पर बाबा जी उच्चारण करते हैं भाई ये जो माया है इस साथ जाने वाली नहीं, जो साथ जाने वाली चीज है वह है सिर्फ नाम। कहने भी ये जी माया है ना इहदा ना कदे आउंदियां दा पता लगदा ते ना कदे जांदियां दा पता लगदा। एक छल है किस तरह साहब उच्चारण करदे ने
1: माई माया छल तृण की अग्निमेघ की छाया
0: तृण की अग्नि तृण आखदे ने तीले नूं। बाबा जी कहंदे ने भी जिस तरह तीले नूं अग लगा दित्ती जाए ते पल नहीं गिणे जांदे सड़के सुआह हो जांदे। मेघ की छाया मेघ बदल आसमान ते छाया होया बदल जिस तरह आकाश से मंडला के आंदा बरस के चला जाता है पता नहीं लगता। इसी तरह बाबा जी कहते भी माया का भी नहीं पता लगता।

दबाई जाओ, पानी अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि अंदरली हवा पानी नूं अंदर लंघन नहीं देती। पर थोड़ा जिहा टेढ़ा कर दईए, पानी नूं अंदर लंघ जाण दी आग्या दे दईए, राह दे दईए, फिर पानी अंदर लंघ जांदा, हवा नूं बाहर कढ दे, हवा अपने आप बाहर हो जाए। जीवन में कोई अमृत भर जाए तो व्यो रह ही नहीं सके। वह अमृत भगत नामदेव जी कहते मैं अपने सारे शरीर च सारे जीवन च भर लिया, इस उन्होंने 70 ते 2 की गल की। कई बार तो हैरान हो कि पुराना विज्ञान किड्डा मुकम्मल सी, अज का विज्ञान अपनी तरह मान कर इस शरीर के 72 करोड़ नाड़ी तंतु लिखे गए पुराने प्राणा में, निके तो निके शरियान तो लैके वड्डी तो वड्डी नाड़ी तक, जिन्हां विच मुख नाड़ियां वड्डियां जिहड़ियां ने फिर 72 गिणियां। भगत जी कहिंदे ने मेरे शरीर की हर नाड़ी अमृत नाल भर गई, शरीर का रोम रोम अमृत नाल भर गए, 70 दोए भरे अमृत सर। लेकिन होया तद है जब 10 बैरागण मोहे बस कीने, 5 ज्ञान इंद्रे 5 कर्म इंद्रे जेड़े रसां विच पए होए। अगे मैं इन्हां दे वस चलदा सी, अगे मैं इन्हां दे अधीन सां, कदे मैं जबान दे अधीन रहा, कदे मैं कन्नां दे, कदे अखां दे अधीन रहा, कदे मैं काम दे अधीन रहा, इन्हां इंद्रियां दे अधीन सां मैं, इन्हां दा गुलाम सां। लेकिन गुरु की जुगत लैके अपने आप नूं समझा के मैं इन्हां दसां दे दसां ज्ञान इंद्रियां नूं काबू कर लिया, 10 बैरागण मोह बस कीनी, बस कर लिया इन्हां दसां इंद्रियां, इन्हां नूं बस करन तों बाद जिहड़े इन्हां दे स्वादां विचों पैदा होए सन काम क्रोध लोभ मोह हंकार, हुण उन्हां दा नां कोई नहीं रह गया। पंचों का मिट नाम, उन्हां दा नां मिट गया, उन्हां दी हस्ती खत्म हुंदी चली, इह काबू आ गया ते उह मिट गए। जद उह मिट गए ते फिर हुण बाकी कुछ तां भरना सी ना इस जीवन विच, पिछे विकारां दा कारण विहो दा कारण निकल गया जीवन विचों, कुछ तां भरना सी ना, ते भरे जाण वास्ते जो परमल चीज सी उह सी नाम दा अमृत। उस रस नाल मेरियां सारियां नाड़ियां, मेरा सारा जीवन, मेरा सारा शरीर भर गया। यह सच करके जानना भगती दा रस निरा मन नहीं मानदा, तन भी मानदा। तुसी नितनेमी हो, कई बारी तुसां बैठे हां, बाणी पढ़दे हां, सिमरन करदे हां, अमृत वेले जाके थोड़ा चिर भी चौंकड़ा मार के ध्यान करन बैठे, महसूस किया होगा झरनाहट आउंदी, शरीर विच झरनाहट आउंदी, वह आरंभ हुंदा है, रास्ता आरंभ हुंदा है। गुरमुख इस रस नूं लमका लैंदा है, मनमुख झाके छड्ड दिंदा है। इस रस दा झलका जलवा तां मिल जांदा, उदों ही मिल जांदा है जद कोई बंदा थोड़ा जिहा महापापी लोकां नूं वेखिया गुरु की सरदल ते मत्था टेकदिया, कई बार वह भी झुनझुनी लैंदे, वह भी एक थराज महसूस करते हैं, चुनचुनाहट भी जीवन च महसूस करते हैं, रास्ता आ जाता है। लेकिन दूजे रसा च फसे होने करके वह इस रस नूं मान के भी छड्ड जांदे। गुरमुख वेखदा है रस नूं, कहिंदा फिर यह छड्डण वाली चीज तां है नहीं, सारे शरीर के अंदर एक निक्की जी मिठी जी कंबणी छेड़ के मालक वह रस दर्साउंदे ने अपने भगत नूं। भगत जी कहिंदे ने वह रस मैं वेखिया ते फिर लै ही लिया, माण ही लिया, फिर उस नूं अपने जीवन च रचा ही लिया। 70 दोए भरे अमृत सर, दिख तो मार कढ़ाव, हुण मैं इस तों पिछा उहनूं तैयार नहीं। वैसे तां ज्ञानी दूजा अर्थ भी करदे ने, कहिंदे ने हुण मैनूं दुबारा जम्मण की लोड़ नहीं, पाछे और पौर न आवण पाव, हुण मैनूं मुड़ के पिछा आउण की लोड़ नहीं पएगी। लेकिन एक सूझवान विचारवान यह भी अर्थ दिंदे ने, वह कहिंदे ने हुण इस तों पिछा मैं मुड़न नूं तैयार नहीं, पाछे बौर न आवण पाव, जो अवस्था मैनूं मिल चुकी है मैं इस तों पिछा हटण नूं तैयार नहीं। हुण एक बंदे नूं अमृत का रस ही ना आया होवे ते उहदे वस की गल नहीं, अमृत छक लिया होवे अमृत का रस ना आया वो गल हो रही। लेकिन जिस बंदे नूं बाणी पढ़न दा नाम जपण दा अमृत छक के रहत बहत रखण दा रस आ गया है, वह रहतां नूं किवें छड्डेगा, वह बाणी नूं किवें छड्डेगा, वह नाम नूं किवें छड्डेगा, बड़ा मूर्ख होवेगा जे छड्डेगा। या तां उहने रस माणिया ही नहीं तां एडा कीमती रस आ जाण तों बाद उहनूं छड्ड देवे, कौन ऐसा कमलापण करेगा। भगत जी कहिंदे ने मैं इस अवस्था तों पिछा हटण नूं तैयार नहीं, थले आउण नूं तैयार नहीं, जो रस आया है जो एक कदम भी पिछे हटण नूं तैयार नहीं मैं।

दुख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता।

रखे गए बाब जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया ओ सारिया नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सभना।

साहिब सकलियो रुखड़ा अमृत जांका नाम जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही दिओ दे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरख्त ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जड़ा साहिब है प्रभु है।

तो बिना छुटकारा नहीं, नाम तो बिना कोई बाणी फड़न वाला, नाम तो बिना कोई वस्तु नाद नहीं जान वाली। इसलिए है कलगियां वाले पातशाह, हे दुष्ट दमन दाता, हे महान तपस्वी, हे मुकुंद दे निवासी सतगुरु, सानू जोड़ लै नाम दे नाल, सास ग्रास तेरा सिमरन करके, श्वास सफले करके, मुख उजला करके तेरे चरणा में जाई। जो गुरु के लाल श्री हेमकुंड साहब श्रद्धा और भावना दे नाल नाम जपदियां सेवा सिमरन परपकार करदियां जांदे हन, इस रस दा इस स्वाद दा उन्हां नूं ही पता है। निरंकार आप ही अपनी शक्ति बख्श के ऐसे कठिन रस्ते तो आप सहायता करके ले जांदा, औखी घाटी बिखड़ा पेंडा मेरे अंग संग होए सहायगी। जो सिमरन करदियां उथे पहुंचदे हन भाई, उन्हां दे चेहरियां दे रंग भी तब्दील होंदे हन।